पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

0: ओ मेरो फुलिवारी, अब के छ त विचार?
1: के विचार? को फुलिवारी? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त अनि मेरो फुलिवारी।

0: Aşağı üyesiyim.
1: क्या माल है
2: क्या माल है यार,
0: ये कोई सिखा नहीं सकता मेरे ख्याल से.
1: हाय रूपा नालिया.
0: नालिया उसकी बेटी. हाय रूपा नालिया.
3: हाय रूपा.
0: अच्छा ये सीन
1: क्या माल है
2: क्या माल है यार,
0: ये कोई सिखा नहीं सकता मेरे ख्याल से.
1: हाय रूपा नालिया.

0: Three, two, one. This is my key to your machine. Huh. Why can't I pull it out?
1: Wait a second. Let me check my combination.
2: आज के बाद तुम अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना।
3: हाँ हाँ नहीं दिखाऊंगा।